0: 96.7 FM પર વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું આ અમદાવાદ કેન્દ્ર છે. બરાબર 6 વાગે સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં ફરહત નાઝ. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा. इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है. इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए थे. रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है. ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे. पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे. 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है. दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि हमने LPG के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है. LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है. एक रिपोर्ट.
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है. प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है. लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है. आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे. लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान.
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है. ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा. इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे. इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है. ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी. उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं. BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित

0: प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું આ અમદાવાદ કેન્દ્ર છે। પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની આ રચનાથી, સ્વર ચેતન ગઢવીનો।

घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने

मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमने सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से किए गए संवाद के माध्यम से फिल्म संगीत के अनेक

0: उपयोगी एवं रोचक पहलुओं की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो सुनिए इसी श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। श्री राहुल देव बर्मन के साथ हुए संवाद में भाग लिया है आपके चिरपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। ये आज हम लोग मेरे ख्याल से आखिरी प्रोग्राम के लिए आए हैं।
1: आपको मेरे नमस्कार में सैडनेस नहीं दिखाई दी? कितना नमस्कार,
3: उदासी तो मुझे उदासी सुनाई दे रही
1: जी। जब हमने दिल पड़ोसी ये रिकॉर्ड बनाने की सोची
2: जी,
1: सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है।
3: वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ।
1: नहीं,
3: ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए इसे बनाने के लिए
1: पीछे नहीं पड़ती
3: जी। हाँ, ये हजरत को ना पकड़ती यहाँ पर इस तरह, तो ये एल्बम कभी ना होती।
1: और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और
2: तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं?
1: और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको
2: गहरी बात
1: से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। और मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी।
1: नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ और सब शायद दुनिया के सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ।
3: तो मैं जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में, जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़में भी नहीं लिखते, पोएट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है, जाने दो मुझे जाने दो, एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तनहाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है। द मैन हैज बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज्मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये, और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं। दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था
2: रात क्रिसमस की थी,
3: रात क्रिसमस की थी।
1: इस गाने में
3: ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी।
1: और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में, पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन छन छन छन आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां सब गा रही हैं, और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज
3: अच्छा, ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे,
1: मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है।
3: सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।

0: मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को राजुल का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत छोटे बाबू फिल्म से सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। इंदिवर के बोलों को धुन में पिरोया है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे मीनाबाई का ये भजन। फिल्म का नाम था तूफान और दिया, संगीत वसंत देसाई का था। और आइए अब सुनते हैं सती नागकन्या फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में। जीएस नेपाली की शब्द रचना को संगीत से सवारा है एसएन त्रिपाठी ने।

0: यहाँ कैसे आना हुआ?
1: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
0: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
1: ये कौन सा टीका है दीदी?
0: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
1: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
0: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
1: धन्यवाद दीदी।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सौनी माटे सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी नो संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अत्यार सुधी में 8 करोड़ 85 लाख थी वधु लाभार्थियों आ योजना में जोड़ाया छे। जो तुम्हारी उम्र

हमारा ही प्यार के कार्यक्रम का अगला गीत नसीब फिल्म से है। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गाना।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आए दिन बहार के। आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की थीं। इस गीत के साथ ही अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: 96.7 FM પર વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું આ અમદાવાદ કેન્દ્ર છે. બરાબર 8 વાગે સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર પ્રભાત.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર પ્રભાત કે સાથ મેં કનકલતા. पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी. 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त

0: करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित

0: हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल

0: क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी क्षण भंगुरता पर आधारित है। क्षण भंगुरता दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रम जाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है। इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछोह सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका नष्ट होना तय है। जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ सब क्षणभंगुर लगने लगता है। जो चीज़ें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती

भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा पाने की लालसा रखता है, खोने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी भावनाएं, रिश्ते, सफलता सब क्षणभंगुरी तो हैं।

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है। फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना। जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षण भंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षण भंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षण भंगुरता हमें ये सिखाती है सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
4: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। चित्रलोक ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

खुशी का प्याला बांटकर पीते इस गीत के बोल तनवीर गाजी के थे। अक्टूबर फिल्म का ये गाना था, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में शांतनु मोइत्रा का संगीत था। वैसे आज खास दिन है, आज किताबों की बात करते हैं। किताबें लोगों की सच्ची दोस्त होती हैं, ये तो हम सभी कहते हैं। इन्हीं किताबों से जो हमें ज्ञान मिलता है वो आगे का आने वाला कल भी बनाता है, और इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। लेकिन आज के समय में बच्चों और साहित्य के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पहले गर्मी की छुट्टियों में बच्चे कॉमिक्स खरीदने की ज़िद किया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब वो अपने या तो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, या फिर टीवी पर कुछ देखते रहते हैं, या कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय

बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है आज ही की तारीख को, यानी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल दरअसल प्रसिद्ध परिकथा लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्मदिन है और उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हैं ये दिन। बचपन की सुनहरी दुनिया में बाल पुस्तकों का तो बहुत योगदान है और इस दिन का यही उद्देश्य है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति प्रेम को वापस लौटाया जा सके और उनका ध्यान बच्चों की किताबों की ओर आकर्षित किया जा सके। इस दिन के आयोजन में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल का खास योगदान रहता है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के एक अलग राष्ट्रीय अनुभाग को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक बनने का अवसर मिलता है। ये अनुभाग एक विषय का चयन करता है और मेज़बान देश के एक प्रख्यात लेखक को विश्व भर के बच्चों के लिए संदेश लिखने और एक प्रसिद्ध चित्रकार को पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए आमंत्रित करता है। इन सभी सामग्रियों का उपयोग पुस्तकों और पठन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जाता है। 2026 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जा रहा है और विषय बड़ा मज़ेदार है, कहानियाँ बोएं और दुनिया खिल उठेगी। हम तो यही चाहेंगे कि इस आयोजन के जरिए उन पुस्तकों को याद किया जा सके जो हम सभी को कम उम्र से ही आकार देती हैं और उन्हें बढ़ावा भी मिले ताकि बच्चों और उनके विकास पर साहित्य का सकारात्मक प्रभाव हमेशा पड़ता रहे।

tum ta, ta dum ta tum ta ta tum ta.

तनिष सांघवी की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का ये गाना आपने सुना। कुमार के बोलों को संगीत में पिरोया था सचिन जिगर ने, और अब ये गाना। बर्फी फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजें हैं।

श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में बर्फी फिल्म का ही गाना आपने सुना, गीत स्वानंद किरकिरे का, संगीत प्रीतम का। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज ही मनाया जा रहा है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र ने इस विशेष तिथि को ऑटिज्म की एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में उजागर करने के लिए मनाने की शुरुआत की थी। और वैसे देखा जाए तो इसका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना ही नहीं है, ये सभी जगह पर समाज में, सरकार में और दुनिया में स्वास्थ्य प्रणालियों में, समुदायों में एक महत्वपूर्ण आह्वान है कि ये ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकारों की पुरजोर उनका समर्थन किया जाए और ताकि वो लोग संतुष्टिपूर्ण, स्वतंत्र और सार्थक जीवन जीने के समान अवसरों का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ ये भी कि उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीने में दिक्कत ना हो। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 की जो थीम है वो है ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल है, यानी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ मैटर्स। ये विषय ऑटिस्टिक व्यक्तियों की गरिमा, समावेश और समान अधिकारों पर जोर देता है, साथ ही शिक्षा और कार्यस्थलों में सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।

माई नेम इस खान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज़ में। निरंजन आयंगर के बोल थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत था। फिल्मों की दुनिया और फिल्मों के शौकीनों के लिए 2 मई की तारीख एक और ख़ास जगह रखती है। आज यानी 2 मई को होता है फिल्मकार सत्यजीत रे का की जन्मतिथि मनाई जाती है। और हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर। सुनना ना भूलिएगा। अब ये गाना आपके लिए।

0: धड़क फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अजय गोगावले की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और अजय अतुल ने धुन बनाई थी।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
5: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
6: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
7: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनवा रहे हैं आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन का गाया हुआ। लिखा है अन्विता दत्त ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

इश्क से महकते उस गीत के बाद अब अगला गाना टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से सचेत टंडन की आवाज़ में, परंपरा ठाकुर साथ में, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इस फिल्म के गीत लिखे और सचेत परंपरा का संगीत है।

कहीं एक मुख्तसर सी मुलाकात की बात हो तो फिर ये बात ज़रूर होगी। तेरी मेरी कहानी फिल्म के इस गाने के साथ वाजिद अली की आवाज़ में प्रसून जोशी का गीत, साजिद वाजिद का संगीत।

ये ख़ास मुलाकात, कुछ बातें अनकहीं, बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और इन गीतों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

द डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे कमाल खान का गाया हुआ ये गाना। रजत अरोरा ने लिखा था और विशाल शेखर ने संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना सिंघम फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाज़ों में। स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीत से संवारा है अजय अतुल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने हिचकी फिल्म का ये गाना सुना, राजशेखर के बोल, जसलीन रॉयल का संगीत। और यहीं तक है आज का सफ़र चित्रलोक कार्यक्रम में। दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

दोस्तों नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी। वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी। वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था। वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं। सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए।

सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म दो बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: जाए।
1: 2 बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
0: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
1: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसा घर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे भाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफटाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
1: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
1: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: तो
1: साथ,
2: तो मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
1: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए लिखा है,
1: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे,
2: हाँ जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
4: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
3: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, ये आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कह

0: लाता है और दोनों आमने सामने रहती हैं और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
1: दो घर?
0: जी हाँ, दो घर। और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
1: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
0: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
1: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
1: और तार?
2: जी हाँ।
0: तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
1: क्यों?
0: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
1: बुरी खबरें?
0: आपने कुछ सुना नहीं?
2: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
0: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
3: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप। तो मैं चला गया और उन्होंने

0: खुद दरवाजा खोला क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
1: जी।
0: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
1: जी हाँ।
0: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
1: अच्छा।
0: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे, तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक, और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
1: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
0: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क, इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माई वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
1: जी
0: एंड हियर इज माई स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
1: ओहो।
0: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर, और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहाँ से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहाँ से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
1: जी,
0: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया है पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: फिर अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीब और गरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि I don't know what he has written, but it sounds very good.
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जो मानिक उनके घर का नाम था। और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे।

कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा, वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा, विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीब गरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो वो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते।

0: इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो वैसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मरतबा आता है, एक मरतबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद ज़हीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी और उसकी बहुत सारी मिसालें थीं। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज़्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्र गुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की ज़रूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: डायरेक्शन की जो ज़हानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूँगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे, वो आए और वो बाहर एक, उस ज़माने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी, मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे, शोमेंदु रॉय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शोमेंदु रॉय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिकदा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया? तो वो बहुत देर तक टालते रहे। फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे, और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया? थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना? मैंने कहा तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है? सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा न कि नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला जब

0: भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो एक दो मुलाकातें उनसे जरूर होती थी। हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था, तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे। वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: खुशहाली नी भार।
1: नैनो खातरनो कमाल खेतर खेलुत सब बने खुशहाल।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: गुजराती फिल्म संगीतना कार्यक्रममां मित्रों हवे सांभळीए अषाढ़ी बीज फिल्मनुं गीत, महेन्द्र कपूर अने भारती कुंचालाना स्वरमां।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: धूम मस्ती धूम कार्यक्रममां मित्रो हवे सांभळीए गुरु रंधावाना स्वरमां हिंदी मीडियम फिल्मनुं आ गीत।

0: नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
1: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
0: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
1: ये कौन सा टीका है दीदी?
0: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
1: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
0: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
1: धन्यवाद दीदी।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
2: गा के

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म का नाम है जागते रहो।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतज़ार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले सफ़र का। तो चलिए, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरीले सफ़र पर, ठीक है। जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरीले सफ़र पर। लेकिन लेकिन लेकिन ज़रा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है, उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफ़र में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के? चलिए, तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है।

देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ। और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? आपको क्या लगता है जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर पर। और देखिए ना, किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही ही तो कहा है। लेकिन हाँ, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं। हम तो सफर में भी पत्थर से रास्ता निकाल लेते हैं हुजूर, है ना। तो दोस्तों, कहीं कहीं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, और आज बस इसी सफ़र को हमें जीना है। और ये सुहाना सफ़र जहाँ मैं हूँ, जहाँ आप हैं और हमारे तमाम दोस्त हैं, हम सब मिलकर चलते हैं इस सुरीले सफ़र पर। मज़ेदार रहेगा ये सफ़र, है ना। आप मेरे साथ हैं।

अच्छे कुछ नाम जुड़े हैं, बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ को चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं, कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी हैं। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं, पान खाए सैया हमारो। अच्छा, आपने गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही हैं वो कौन सी कलाकार हैं? जी हाँ।

0: ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफ़र को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है। आज सुरीला सफर आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है जिसमें जिंदगी।
1: विविध भारती मुंबई ने प्रस्तुति सुरीला सफर आप सांभळी रह्या छो। कार्यक्रम नो शेष भाग आप सांभळशो गुजराती में समाचार बाद 96.7 FM पर विविध भारती ने विज्ञापन प्रसारण सेवा अमदावाद केन्द्र साथ आप जोड़ेला छो।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए।

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती।

0: थैंक यू।
1: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
2: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना? तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना। तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबूजी दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है, ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का, गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है, क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: सुनते जाना,
2: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
2: बाबू आना, सुनते जाना,
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
2: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका।

0: लड़की पहाड़ी है काटे की लाला,
1: लड़के के भेजे में है गड़बड़ घोटाला।
0: अरे जा जा
1: तू जा जा, अरे जा जा जाके घास का। बाबू आना।

0: रे मत लड़ना मुझसे, वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी पालती मैं तेरा दीवाला,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।
0: अरे क्या क्या?
1: तू जा जा घर जाके।

0: बाउदी बाउदी बोलो बाउदी बाउदी बाउदी
1: जुमरू फिल्म का गाना था, बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी, हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मैं गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही हैं नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है, फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है

की खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुट न जाना। बताइए कभी आप लुटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं। कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या?

0: जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत छिपा है। और अब आप दोस्तों को दिमाग लगाना है भाई, जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिख कर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्ले लिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर इबारत का अर्थ आप समझा पाएँ तो मैं कुछ लिख सकूँ। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने जिस अंदाज़ में लिखा है वो अंदाज़ थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो क्या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है, उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे, कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिख कर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है, इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं, आपको शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, और ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी क्षण भंगुरता पर आधारित है। क्षण भंगुरता दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रम जाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है, इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछो सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका नष्ट होना तय है। जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ सब क्षणभंगुर लगने लगता है। जो चीज़ें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा पाने की लालसा रखता है, खोने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी भावनाएं, रिश्ते, सफलता सब क्षणभंगुरी तो हैं।

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है। फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना। जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षण भंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षण भंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षण भंगुरता हमें ये सिखाती है सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच 12वें पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए

0: राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मत पत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्ति है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ये इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक और ये खत लिखने वाले हैं नुहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए। हाँ। लेकिन आरपी फिलपौतिक जामली ने कहा साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, है? बस वही नहीं आए।
1: हाँ, आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहां से, चल चल। जय और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
3: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
3: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
3: जी
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
3: जी।
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
3: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
3: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करें।
3: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरी लोबना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
4: लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना?
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब है? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
3: जी,
1: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
3: जी,
1: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
3: जी। हाँ।
1: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
4: मेयर साहब
1: जी,
4: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
1: जी।
4: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है। सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
1: वे वे, वे वे, वे वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझे कुछ?
4: जी जी, मैंने तो

0: ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किचकी आंखें हैं।
1: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
1: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ, पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
2: जी।
1: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
2: जी।
1: चाहे तो

0: सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
1: जी,
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
1: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
1: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कराया देता
0: हूं। और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें। अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
1: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को आप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं। बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा? देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगा दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जज ल्यापकिन त्यापकिन
2: जी।
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
2: जी। हाँ,
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूं मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
2: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। आप भी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप?
2: बहुत अच्छा।
0: और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
2: जी,
0: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
2: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह है, हुआ यह कि बचपन में
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ, वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
2: लीजिए। साहब, मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ। देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
2: वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। हाँ, स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
3: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए
3: जी।
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए, आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता है, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा
3: जी। इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब, मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे। उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर, वो कमबख्त पढ़ाता खूब है।
0: आप इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
3: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाए
3: जी? आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
3: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी
0: और मिटा वो हमें रहा है।

0: जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
1: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना वैना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
1: जी, भेष बदल कर?
2: बदल कर
0: मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों, तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ, तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
1: जी,
0: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों, हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
1: कौन?
4: कौन? कौन? कौन?
5: नमस्कार मैं।
0: क्या? क्या? क्या? क्या? क्या? तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है, कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
5: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
5: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
5: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला
0: है। तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर। अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
1: जी, जी।
0: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
1: जी
0: है।
1: जी, हाँ, ठीक है।
0: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
5: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
0: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
5: समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इतला हो?
5: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
5: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
0: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
6: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
0: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
6: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
0: जी।
6: हाँ छोड़िए। हाँ याद आया,
0: क्या
6: ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
0: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहां बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जंगल से पहुंची आ गए हैं।
7: हे भगवान,
8: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
9: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
8: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिंस्की, मेरा बोलना काफी है।
9: पर बॉब चिंस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
0: ये आप दोनों महाशय हैं।
10: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
11: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
0: क्या हुआ डॉक्टर चिंस्की?
11: क्या हुआ?
10: खबर है, हम लोग होटल में पहुंचे थे कि हाँ, मैं और डॉब चिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
11: बॉब चिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
10: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉब चिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
11: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
10: अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
0: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
10: सुन लिया ना डॉब चिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुना। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबोकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
11: समोसे वाले की दुकान के पास।
10: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी, वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
11: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
10: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की, इसने मुझसे कहा के मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
11: सूट बूट पहने हुए
10: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था, रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो।

0: मैंने छूटते ही डॉब चिंस्की से कहा, हो न हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी, 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग डाल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉब चिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
1: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर
1: क्या,
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
1: क्या, नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता?
2: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉब चिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
2: नंबर 4,
0: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी ना?
1: और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
0: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
3: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉब चिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
2: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गरीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का, मिश्का
4: जी हुजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
4: जी तैयार है।
1: प्रहरात कहाँ है?
4: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
4: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे, जल्दी जल्दी।
3: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
5: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
3: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
5: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर यह है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा।
6: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन कौन है?
0: कौन?
7: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
6: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
7: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
6: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
7: जी बहुत अच्छा।
6: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
7: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता हूं।
6: एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं, डॉक्टर्स की तुम मेरे साथ।
0: जी बात मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
6: समझदारी की बात करो बाब चिंस्की, गाड़ी में 2 ही आदमियों की जगह।
0: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
6: अच्छा आइए आइए, चलिए चलिए
8: आइए चलिए।
9: सुनिए सुनिए,
10: अरे पापा तो चले गए। मम्मी
9: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे।

0: जाने से पहले हमें बुलाए क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
1: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
2: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
3: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
4: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलिस्टकोफ के लिए यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
3: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए, कुछ ना पूछिए। खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने, मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, इतने जोर की भूख लगी है कि मालिक आ गए। मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
5: आसिफ नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
3: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
5: क्या
3: मालिक? मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा।
5: उसकी शेम अचाल के हमें खाना देने से इनकार करे।
3: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है, कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
5: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
3: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
5: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
3: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
5: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
3: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
5: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए, यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकलें भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
3: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया।
5: खाना
3: जी?
5: यानी कि खाना? खाना
6: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
5: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
6: जी जी।
5: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, ये क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
6: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
5: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई, मछली कलेजी कटलेट और वो अचार चटनी?
6: बाकी चीजें नहीं है।
5: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से घाक उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें अड़प रहे।
6: अजीब है, ऊंचे ग्राहकों के लिए है आप जैसों के लिए नहीं।
5: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
6: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
5: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल कमार से बहस कर सकूं। ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक घोल दिया गया।
6: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
5: वापस ले आना? लो आसिफ बाकी तुम पी लो।
3: बहुत अच्छा।
5: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ थोड़ा तुम भी लो।
6: मैं अब जा सकता हूँ।
5: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ तुम वेटर जी के साथ चले जाओ, ये खाना है सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
3: मालिक मालिक नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
5: क्या?
3: जी हाँ।
5: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी,

0: नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा?
1: श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
2: आप भी मेरी नमस्ते दीजिए।
1: क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला।
2: नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
0: लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है। वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है, मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
2: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं, उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है, ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
0: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
2: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत की।
0: जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
2: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
1: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं?
0: माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
2: मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है, और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
0: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
2: नहीं,
0: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी में नहीं है।
2: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चू, मैं भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा पहला।
0: ठीक है। आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
2: ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा,
3: पूरे 200।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
4: अरे
2: डॉबचिंस्की,
1: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
0: ऑसिफ, वेटर को बुला लाओ।
5: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आइए आज सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहाँ आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे
0: जी
1: जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रीकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद,
0: हाँ,
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवगन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से, वो तो उन्होंने अपना इससे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ।
1: बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह।
0: हाँ,
1: उसमें
0: हाँ।
1: कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता

0: था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है,
1: जी
0: और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की,
1: जी
0: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीरदार,
1: जी
0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं, और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर,
1: हाँ
0: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी,
0: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर,
1: अच्छा
0: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा
1: हाँ
0: ब्रिज, तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं,
1: अच्छा
0: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में,
1: ओहो
0: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना,
1: जी
0: तीनों के चेस तीनों भी क्रॉस करते पूरा जंप
1: अच्छा
0: करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था, और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
1: जी। तो
0: अभी।
1: ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, ये
0: हाँ,
1: कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर,
1: अच्छा
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते, शॉट
1: अच्छा
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया,
1: अच्छा
0: हीरो उधर से आ रहा है,
1: हाँ
0: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो कट
1: अच्छा
0: में, तो
1: हाँ
0: हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर इसने
1: हाँ
0: देखा, उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर
1: ओके
0: उसके बाद ये कर लेते हैं, ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
1: जी जी
0: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में,
1: हाँ
0: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं, और
1: हाँ
0: उसको असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका, जो
1: हाँ
0: इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
1: हाँ
0: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो
1: अच्छा
0: अपना कहानी में हो गया,
1: जी
0: वो
1: जी
0: शूट कर लेते,
1: हाँ
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था
1: हाँ
0: उसका था, और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल,
1: अच्छा
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे। वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो
1: हाँ
0: लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया,
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था, तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागे दर के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाबलो सौभाग्य चलेनी
1: मराठी फिल्म थी
0: मराठी फिल्म,
1: जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर, तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे वो,
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो,

0: आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और को बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है।
1: अच्छा,
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता था, प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा,
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 मार्च को खत्म किया,
1: हाँ,
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के, गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा,
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए। क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है, बाकी तो सब था। और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे, तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, वो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं।
1: अच्छा,
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ।
1: हाँ जी,
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है। लड़के, लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ,
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगनी है,
1: हाँ,
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो अच्छी मिले, तो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ,
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू। ये जिंदगी पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार वैजयंतीमाला का,
1: हाँ,
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था।
1: अच्छा,
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है
1: सर? जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है,
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ,
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है,
0: हाँ हाँ
1: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो
1: वो हमारा पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ,
1: वो सारे का एक फेडरेशन है।
0: अच्छा,
1: वो उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
1: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
0: जी,
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ,
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि
0: जी,
1: भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था,
0: अच्छा
1: तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ,
0: जी,
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही?
1: हाँ,
0: जी जी जी जी
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ,
1: जो मेरा राजश्री में एक साल पूरा हो गया था,
0: हाँ,
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था,
0: जी,
1: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल
0: हाँ,
1: वो नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी,
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो
0: जी
1: कि उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेने आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते हैं, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA जो आप बोले ना,
0: हाँ, AFE लिखा होता है,
1: AFE लिखा रहता है,
0: हाँ
1: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी जी जी
1: लिखे,
0: जी
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये, और
0: अच्छा,
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए, यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोंक जो होना जरूरी है।
0: हाँ,
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं,
0: अच्छा,
1: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
0: हाँ,
1: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। न रूठो रूठो न रूठो न रूठो मेरी जाना, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी, जी।
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर।
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ,
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ,
2: तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं।
1: अच्छा।
2: तेरे क्या पैसा लेना है ले ले, एक कर ले।
1: अच्छा।
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा।
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम।

0: मैं खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया, तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए,
1: हाँ
0: कैमरे में चिप्स आ गए, जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो
1: जी
0: मैंने बनाई है माता जी के नाम से, मूसा माता के नाम से।
1: जी
0: तो मैंने भी क्या किया, एक कैमरा लिया,
1: अच्छा
0: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी
0: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा
0: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ
0: वो हम फिल्म मशीन आते हैं, FFI बोलते हैं,
1: अच्छा
0: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं,
1: अच्छा
0: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है। अभी
1: अच्छा
0: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी
1: हाँ
0: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ओलो कलर रील आते थे
1: जी
0: 400
1: जी
0: 400 फीट के।
1: हाँ
0: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव,
1: हाँ
0: नेगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे,
1: अच्छा
0: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था,
1: अच्छा
0: नेगेटिव उधर ही रहता था।
1: हाँ
0: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 टेक 1 ऐसा करके आता था आवाज,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है वो
1: हाँ
0: मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये
0: फिर वो
1: तरीका
0: क्या
1: है।
0: सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ
0: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ
0: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रखे, बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा
0: और उसका फिर रील बनता था, रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है,
1: हाँ
0: सब होता था, फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर,
1: जी
0: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
0: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे,
1: जी
0: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे, पॉजिटिव मतलब जो हमना एडिटिंग हो गया
1: जी
0: उसके बाद में उस वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया, तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे, उसका
1: अच्छा
0: डबिंग करते थे, तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था, फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे।
1: अच्छा
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो, 25 हो, कोई भी हो,
1: अच्छा अच्छा
0: हीरो हीरोइन, लॉ अपना विलन, हीरोइन की माँ, सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का,
1: अच्छा
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे है और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक टक टक
1: हाँ हाँ
0: टक,
1: हाँ
0: ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको
1: अच्छा
0: डबिंग की तरह, और
1: हाँ
0: वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग ला के देता था, हम काट के उसको डाल देते थे, तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी।
0: अलग सा, उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल,
1: अच्छा
0: ये सब असेंबल होता था। और जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का,
1: जी
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसा
1: अच्छा
0: ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे,
1: जी
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे,
1: जी
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था,
1: जी
0: बहुत सारे लोग आए, अभी एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था, तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक,
1: जी
0: पफ बब ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा, और म्यूजिक का भी ऐसा होता था साउंड का, वो सब बोलते थे उसको।
1: जी
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज़ के,
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे,
1: जी
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्ता ने में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था,
1: अच्छा
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे,
1: जी
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्ज़ा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है, तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने

0: काम किए,
1: हाँ,
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो,
1: अच्छा,
0: जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ,
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है,
1: हाँ,
0: डेविड नाम है, डेविड पॉल
1: अच्छा,
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे, तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है, तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी जी,
0: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे,
1: हाँ,
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया, हमारे दोस्तों बोलते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने।

0: और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे
1: जी, जी।
0: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे
1: हाँ।
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को, यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे
1: जी, जी।
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में
1: हाँ।
0: और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहाँ पर पढ़ता था
1: अच्छा,
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से।
1: हाँ।
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे कॉलेज के फ्रेंड थे
1: जी,
0: वो पिक्चर देख रहे थे
1: हाँ।
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का मतलब ज़्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी,
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया, वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे
1: हाँ।
0: 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए।
1: हाँ।
0: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है चलो पिक्चर, हमको फ्री में पिक्चर रहती थी
1: जी जी तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है हिंदुस्तान में, म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा
1: बिल्कुल,
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है
1: हाँ जी,
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, भोपाल इसकी लोक गायिका है बिहार की,
1: जी जी जी
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे।
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवस है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है
0: जी जी
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं,
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है, क्योंकि उनका एग्जीबिशन ज़्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज़्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है।
0: अच्छा,
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज़्यादा चलता है, तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा,
1: तो उनका क्या रहता है कि फ़र्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में, वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका, तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको

0: बहुत जल्दी फास्ट करने पड़ते।
1: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं। आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन?
0: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
1: जी,
0: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए
1: जी,
0: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आठ फिल्म से तरफ जरा झुकाव था उनका
1: जी,
0: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें, जैसे डेविड धवन है कमर्शियल में सक्सेस हो गए, यन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
1: जी,
0: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है जो दरक परिवार,
1: अच्छा,
0: दरक परिवार ही नहीं, जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है एक मूसा माता
1: जी,
0: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी, कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
1: अच्छा,
0: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में,
1: अच्छा,
0: मूसा माता का, तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
1: जी जी
0: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सह परिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ से कल्पना आई, मगर वो अभी क्या था कि सब चीज़ें असेंबल करना
1: हाँ
0: पॉसिबिलिटी नहीं थी
1: जी,
0: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था, तो हमने क्या किया सारा थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
1: जी,
0: उनके बारे में
1: जानकारी
0: जानकारी ली
1: जी,
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
1: अच्छा,
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
1: जी,
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है और वो शॉर्ट फिल्म है,
1: अच्छा,
0: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है,
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया, तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए, तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए हैं और ये करते रहेंगे
1: जी।
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
1: हाँ जी,
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ,
0: ये कॉमन डायरेक्टर है पिक्चर नहीं बना सकता
1: जी जी जी
0: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
1: अच्छा,
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया
1: जी,
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते थिंकिंग बड़ी हो गई।
1: हाँ,
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना दिया के पर आंचलिक उपन्यास था
1: जी,
0: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाला के करमाला कोई गांव है,
1: हाँ,
0: उसमें शूट किया है वो पिक्चर में, एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
1: हाँ
0: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
1: जी,
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया,
1: अच्छा,
0: कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ए बी सी पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे भी पिक्चर बिक जाती थी, मगर अभी क्या हुआ पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गया, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है, तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका

0: आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
1: अच्छा जी,
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर पहला नीलानी ने किया
1: जी।
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे,
1: अच्छा
0: पिक्चर चलती थी, अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
1: हाँ,
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में
1: जी,
0: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
1: अच्छा,
0: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोल के मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या कुछ, नहीं बोले वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
1: क्या बात है, तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं को बताएं। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला, और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान
0: जी,
1: इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी ये गीत सुनिए, गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन है, लिरिक्स से ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ने शेर बसाया ई हाचू बापू जी ने आश्रम बनाया हाचू पण जेने बुद्धि पानिए एवा तमे नवेली नाथ केम कापो छो काचू
1: काचू काचू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला प्रस्तुत किया है संगीतकार नौशाद ने।
1: आपने जिस दिलेरी से अपने देश की रक्षा की है, दुनिया में उसका जवाब मुश्किल से ही मिलेगा। हम सबकी दिली दुआएं आपके साथ हैं। आप ऐसे वीर जवानों का सहारा और देश के अंदर एक दूसरे से हमदर्दी और प्यार हमारी बेशकीमत आज़ादी को सदा अमर रखेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, एक और बहुत बड़ी शक्ति है जो आप में जोश बरकरार रख सकती है और साथ ही साथ शांति का संदेशा भी पहुंचा सकती है, वो है संगीत की शक्ति। हाँ तो मेरे फौजी भाइयों, इसी संगीत के आधार पर आज का खास प्रोग्राम जयमाला आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हमारे संगीत में बहुत से रस माने गए हैं, लेकिन वो रस जो इंसान को माया मोह से हटाकर भगवान तक पहुंचा सकता है, वो है भक्ति रस। तो लीजिए, सबसे पहले इसी रस में डूबा हुआ एक गाना सुनिए। इस गाने की तर्ज मैंने फिल्म बैजू बावरा के लिए तैयार की थी। रचना शकील बदायूनी के कलम का नतीजा है। इस गाने की बंदिश राग मालकोस में है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि अपने मुल्क के संगीत का प्रचार किया जाए, ताकि हर खास व आम राग और रागनियों की अहमियत को समझ सके। इस गाने के सिलसिले में मुझे वो वाकया अच्छी तरह याद है जबकि ये फिल्म सबसे पहले मरहूम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति भवन में दिखाई जा रही थी। फिल्म के निर्माता विजय भट्ट साहब भी वहाँ मौजूद थे। फिल्म चल रही थी और जैसे ही ये गाना मन तर्पत हरि दर्शन को आज शुरू हुआ और पर्दे पर कृष्ण भगवान की सुंदर मूर्ति नजर आई, उस वक्त राष्ट्रपति जी ने अपनी जगह से उठकर बड़ी श्रद्धा से आंखें बंद करके मुरली वाले शाम की छाया को नमस्कार किया, मानो स्वयं कृष्ण भगवान उस समय दर्शन दे रहे हों। तो लीजिए, ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए, मन तर्पत हरि दर्शन को आज।

भक्ति रस की इस रचना के बाद एक गीत सुनिए जिसमें देशभक्ति की झलक है। इस गीत में भारत माता का पैगाम मुल्क वालों के नाम है। ये गाना बम्बई में 1963 में कौमी तरानों के उस सम्मेलन में पेश किया गया था जिसके सदर थे हमारे लाडले प्रधानमंत्री मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कौमी तराने की तर्ज भी मैंने ही बनाई है और खुमार बंकवी साहब ने इसे लिखा है। ये गाना भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है और इसका मुखड़ा है, ऐ मेरे लाडलो उठो हिम्मत से काम लो।

0: નઈની ભાર.
1: નઈનો ખાતરનો કમાલ, ખેતર ખેડૂત સૌ બને ખુશહાલ.
2: और उसकी तरंग से कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठता है. ऐसी ही एक धुन मैं आपको सुनवा रहा हूँ एस डी बर्मन की आवाज में, जिन्होंने इसकी तरस भी बनाई है. सुन मेरे बंधुरे.

शायद ऐसे ही धुनों से मुतासिर होकर एक प्रेमी अपनी महबूबा को यकीन दिलाता है कि उसकी एक निगाह करम के बदले वो उसे जीवन भर सुंदर गीत सुनाता रहेगा और वो मन की वीणा के तार भी छेड़ता रहेगा। शायद इसी तरह वो अपने दिल की आग दूसरों के दिलों में लगाकर रूमानी दुनिया में एक तहलका मचा सके। ये जज्बात आपको फिल्म अंदाज के उस गाने में मिलेंगे जिसे मुकेश ने गाया और मैंने ही उसकी तरस बनाई। इस नगमे को मजरू सुल्तानपुरी ने तरतीब दिया जिसका मुखड़ा है, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं।

लेकिन ये जरूरी नहीं कि नगमा वसल का जरिया बनेगा। एक बिरहा की मारी अपने पिया की याद में बेचैन है, उसकी तारीफ का बयान करके कुछ गुनगुना रही है, लेकिन दरस को तरस रही है। ऐसी जुदाई की घड़ियां उस वक्त की याद दिलाती हैं जबकि शाम कन्हैया बिंद्रावन में राधा और सब गोपियों को छोड़कर द्वारका जा बसे थे और हर शख्स उनकी मुरली सुनने के लिए बेकरार था। ऐसे ही मजमून की तरह मैंने फिल्म बैजू बावरा के लिए तैयार की थी, जिसे शकील बदायूनी ने लिखा और लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और उनकी सहेलियों ने गाया। अभी तक मुझे याद है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त सब लोगों पर रूहानियत का क्या असर हुआ था। चूँकि मैं भी अपनी तबीयत से रूहानियत और तसव्वुफ़ का कायल हूँ, मैं भी उस माहौल से बगैर मुतासिर हुए नहीं रह सका था। थोड़ी देर के लिए मैं भी अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वो गाना इस तरह शुरू होता है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन छलिया बाजे ना मुरलिया।

0: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: कमाल साहब कहने के कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
2: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।
3: तो कुछ गलत फहमियां एक नारी को घेर लेती हैं।

वो इस तरह से कि वो ये सोचती है कि कहीं उसका साजन किसी और के तीरे नज़र का शिकार तो नहीं हो गया। फिर तो हर वक्त उसे सौतन का ख्याल उसके मन को व्याकुल करता रहता है। मजबूर होकर वो इंतहाई बेकरारी से उसकी वापसी का इंतज़ार करती है, लेकिन जब उसका पिया घर आ जाता है तो उससे रूठ जाती है। क्यों? इसलिए कि शायद वो सच नहीं बोल रहा है और उसके साथ छल फरेब से प्रीत का ढोंग रचा रहा है। बसंत बहार फिल्म के इस गाने में इस प्यार की नोक झोंक का नक्शा बड़ी खूबी से पेश किया गया है। रचना शैलेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का। जज्बात से भरपूर आवाज़ है लता मंगेशकर की।

ऐसी छेड़छाड़ से तो मोहब्बत संवरती है और उसका बंधन और भी मजबूत हो जाता है, लेकिन दिल की बात जबान पर लाना कितना मुश्किल है। सारी दास्तान एक खूबसूरत राज बनकर रह जाती है। ऐसी आजमाइश की घड़ी की नज़ाकतों को आप फिल्म भीगी रात के इस गीत को सुनकर महसूस कर सकेंगे, जिसे लता मंगेशकर ने रोशन के संगीत निर्देशन में गाया है। शब्दकार हैं मजरू सुल्तानपुरी,

सच्ची मोहब्बत में एक आशिक को सिर्फ अपने महबूब का ही तसव्वुर हर घड़ी रहता है। उसके जोर व सितम के बावजूद भी उसके लिए लब पर दुआएं हर वक्त रहती हैं। मोहब्बत का ये राज फिल्म पूर्णिमा में कार फरमा है। गुलजार के इस नगमे को मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई तरस पर गाया है। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक।

इस प्रोग्राम के अंत में अब एक गीत सुनिए जिसकी तर्ज मैंने अपनी आने वाली ताज़ा फिल्म पालकी के लिए तैयार की है, जिसे शकील बदायूनी ने लिखा और इस दो गाने को पेश करने वाले फनकार हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर।

0: हाँ तो मेरे फौजी भाइयों, आज का जयमाला प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर आप सब मेरा सलाम कबूल फरमाएं। जय हिंद।
1: फौजी साथियों की सेवा में सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम अभी आपने सुना, जिसे हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं।

पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं। उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर की देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है। वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको। तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी, वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी।

सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी, जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और 3 बछड़े चिरपरिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मछली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि

मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खींच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, तभी से दरार शुरू हो गई।

0: पत्नी का पत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी का ये था पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी के अंतर्गत। इसमें वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की अनुपम भेंट लेकर मैं आपके साथ छाया गीत के सफर में दिलों की दास्तां बयां करूंगी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारों की बरसात हो रही है, बातों ही बातों में मोहब्बत के सिलसिलों की शुरुआत हो रही है। उनके आने की आहट से दिल की धड़कनें बेताब हो रही हैं।

कातिल अदाएं उनकी हैं, जरा बच के रहिएगा उनसे मुलाकातों में, कहीं दिल घायल करके वो दामन न छुड़ा लें। ये सोच के तबीयत बड़ी नासाज हो रही है, हाले दिल कुछ वो कहें कुछ हम कहें तो धड़कनों को सुकून मिले।

इंतजार की इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझकर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वहीं ठहर जाता।

0: अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है।
1: इंतज़ार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा है।

वो रूठे रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्लाह क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नज़र के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेकरार है।

शमा ने कहा परवाने से, मत पास आ जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है। जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

0: एक तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अशकों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है।
1: चोरी, चोरी।

0: गीत के सफर में आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कभी इसी वादे के साथ। मंत्री वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ढलती जाए रात।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम
2: आप छो विविध भारती ना अमदावाद केंद्र साथे। થોડી જ વાતમાં સાંભળશું હિન્દીમાં સમાચાર, ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
4: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार

0: जवान वीरगति को प्राप्त हो गई। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr.